0: शोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम